बीज नाही बोया रहा बारिक ते बिरद पाया होना सो होया जा जम आए चोट पकड़ तब है काहे रोया जीवन की आस कर जम निहार सासा बाजी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा

बाजीगरी संसार कबीरा चेत ढाल पासा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पासा श्री कबीर जीओ के ते पदे अठ दो तुके सत एक तुका एक एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उदर राखिया बहोर लागी माया।

0: गए मशक्त काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मशक्त काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: फतेह।

कर सदका कर सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रच्छे आर्य आयत देव देव फतेह।

रंग पनंगन एक नजर अपन कर तो बा जी अंद जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर पाला तेरे कार आनंद बधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जल सर्व कला भरपूर दिशा जत कता।

माता तरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी अपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत।

शबद चौंकी सोदार रहरास साहिब जी दे पाठ जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सिखा पढ़ते सुनते सरबत ला।

कच्चो कंचन पयो शब्द गुरु श्रवणे सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख पणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पहन मानक करे ज्ञान गुर कहयो बीचारे कठो श्रीखंड सतगुर किया दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पश परेत सुर नर पये रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते बहु पहुत बचावे सत्र नेक चलावत काव तव तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दै कर पाप संभू न पिटन पावे और की बात कह कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे और की बात कह कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी सा सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठे

कर्तबा, रंग बिरंग नेक न जापन कर्तबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे वास तेरा घर पला, तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महता।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा सिंह प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रख हो सरनाई। सुकहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह, सिर सहा दैसा। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावेसा। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सहा दैसाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावेसा। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा, सत गुर ते जो मोह फिरे, से बद्धे दुख सहाय। फिर मिलन ना पाए नी, जम्मह तै मर जाय। सत गुर ते जो मोह फिरे, से बद्दे दुख सहाय। फिर मिलन ना पाए नी, जम्मह तै मर जाय।

चले सब दे मेल मिलाए। महला तीजा जो सतगुर ते मोह फेरे तिना ठौर ना ठाओ। ज्यो छुट्टड़ घर घर फेरे दोह चारण बदनाओ। नानक गुरमुख बख्शिया है से।

प्रसाद नानक मत पाई सलोक। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया। खेलै सगल जगत

खोल कपट गुर मिलिया। नानक हर संग मीत, धर्म दे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इत चानन होंदया गुर बिन कहूर अंधार महला पहला
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिलवाड़ ज्यों सुजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कौ नानक सोना फली है बपड़े पीता न बेच सवा पौड़ी अपने आप साजियो।

0: दीपालुआ मंडला खंडावर पंडा अंडज जेरज उत्पुजा खानी सेर जहा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी तहा सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीबान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना परवान लख तप पर तीर्थां सहज जोग बिबान लख सुरतन संग्राम रण मह छुटे प्राण लख सुरती लग ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करते करना क्या लिखिया उन जान नानक मति मिथिया

तली खा के मिले तो मस्तक लाइए कूड़ा लाल छटिया कमाना लगते आइए हालत भी हो पाइए दे वही कार कमाइए जे हो पूर्व लिखा था धूड़त ना दी पाइए मत छोड़ी सेव गवाइए मत छोड़ी सेव गवाइए।

नवनाथ निरंजन सेवसन काद समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते

परम पै पुले सुत दारा से प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते।

देवियाँ अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदि नूर अर सोह कुरसो चटियाँ तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पढ़े मुख कंठ सवार

सिद्ध समाद करह नित जगरा दोह लोचन के आहेरा अंतर ज्योत सबद तुन जागा सत गुर जगर निबेरा सोर नर नाथ बेअंत अजोनी सच्चा

सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहो निस्तारा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पढ़े मुख कंठ सवार ताको अंत ना जाई लखना आवत जात रहे गुबार।

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले।